0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234774 court.org.uk।
2: When life gets busy
3: and when family life gets complicated,
2: there's always a reason to talk. जब जिंदगी आपको शहद देती है और यही जिंदगी आपको खट्टे खट्टे लीमू देती है, तो आप हमें ज्वाइन करते हैं
3: Every Wednesday from 10 till 11 on Inspire FM for Family Matters.
2: A show bringing real conversation, practical advice.
3: मैं हाजरा खान और मेरे साथ हैं अफशान इरफान. ज्वाइन करें हमें हर बुध सुबह 10 से 11 बजे Inspire FM 105.1 पर.
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 1:30.
5: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by the world famous qari Mishari Rashid Ali Farsi from Kuwait.
6: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: Midge, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234@core.org.uk।
2: बख्शिश तेरी आंखों की तरफ देख रही है, मोहसन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है। मैं रोज़गुल बज़्म-ए-नात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ हर जुमातुल मुबारक। आप भी हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी आवाज़ में हमद या नात दूसरों की समातों की नज़र कर सकते हैं। तो सुनते रहिए इंस्पायर FM 105.1
3: एवरी फ्राइडे एट 11 AM।
4: From the studios of Inspire FM, the time is now 5:00.
5: Assalamu alaikum. It's now time for the beautiful recitation of the Holy Quran with English translation by Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais and Sheikh Saud Al-Sheikh.

गीत गाते आबशार। ये वादियां उतरिया और कोहसार, यही तो है इंस्पायर एफएम की बहार।

0: मूव फॉर 10 आ गया है दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express. Brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोर्ट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार, मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोर्ट UK ऑफिस 03001233774 court.org.uk।
2: Allah. Every verse has a message. Every reflection brings new understanding. Take a moment to listen, to think, and to draw closer to the words of the Quran. This is Tadabbur al-Quran, where we reflect, learn, and grow together. Join us as we explore the timeless guidance of the Holy Quran. Join me, Sheikh Ahmed, on Tadabbur al-Quran every Tuesday at 10 a.m.
3: From the studios of Inspire FM, the time is now midday.

फिर हर शख्स के किए हुए अमल का पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर जुल्म न किया जाएगा। ये सूरह पाक हुज्जतुल विदा के मौका पर नाजिल हुई है। अल्लामा हाफिज़ इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि इस सूरह पाक में 287 आयात बय्यिनात हैं, 6080 कलिमात तय्यिबात हैं और 25,500 हुरूफ हैं। इस सूरह पाक में अल्लाह तबारक व तआला जल्ल जलालुहू व अम्मा नवालुहू ने बहुत से अहकामात नाजिल फरमाए हैं। अमीरुल मुमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सूरह पाक को इसकी फकाहत और इसके मज़ामीन और इसके अहकामात और इस सूरह पाक को मानी के साथ 12 साल के अरसा में पढ़ा। इस सूरह पाक के अहकामात को, इसके मानी को और इसमें छुपे हुए जो रमूज़ हैं, वो तमाम अहकामात, वो तमाम मसाइल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 12 साल के अरसे में पढ़े और आपके लहते जिगर नूर नज़र हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सूरह पाक के मसाइल और अहकामात को और इसके मानी को 8 साल में पढ़ा। इससे अंदाज़ा होता है कि इस सूरह पाक में कितने अहकामात हैं, इस सूरह पाक की कितनी हिकमतें हैं, कितने नुकात इस सूरह पाक में ज़िक्र किए गए हैं। इब्ने अरबी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने अपने शुयूख से ये बात सुनी है, यानी सूरह अलबकरा के मुतालिका फरमाते हैं कि मैंने अपने शयूख से सुना है कि इस सूरह पाक में 1,000 अमर हैं और 1,000 नवाही हैं, 1,000 अवामिर, 1,000 नवाही और 1,000 हुक्म इसमें बयान हुए और 1,000 खबर इस सूरह पाक में ज़िक्र की गई है। मुख्तलिफ़ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और उनकी उम्मतों का तज़किरा इस सूरह पाक में हुआ है। रसूल मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने मैदान कारज़ार में एक लश्कर तैयार करके भेजा और वो लश्कर तादाद के लिहाज से बहुत बड़ा था, कसीर तादाद में था और उस लश्कर का अमीर सिपा सालार अकाले सलातु वसलाम ने एक नौजवान को बनाया क्योंकि उस नौजवान को सूरह अलबकरा याद थी, हिफ्स थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम जावान के अमीर हो। एक हदीस पाक में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत

0: मूव फॉर 10 आ गया है, दिस गर्ल कैन का नया चैलेंज, जिसमें हर कोई शामिल हो सकता है। बस 10 मिनट मूव करें महीने में 10 दफा। मुझे तो अब ज्यादा ही एनर्जी फील हो रही है और कॉन्फिडेंस भी।
1: अब मेरी नींद भी पहले से बेहतर है। सुबह की हल्की सी स्ट्रेचिंग हो या पार्क में तेज वॉक, कोई प्रेशर नहीं, कोई स्ट्रिक्ट स्केड्यूल नहीं। जब आपके लिए ठीक हो बस मूव करें। मैं पहले ही 3 सेशंस कर चुकी हूँ और बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। पूरे मुल्क की खवातीन इस महीने 10 मिनट 10 दफ़ा मूव कर रही हैं। आप भी ज्वाइन करें, सर्च करें दिस गर्ल कैन मूव फॉर 10।

0: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण है। कोट कश्मीर ऑर्फन्स रिलीफ ट्रस्ट मेरा एक खूबसूरत घर है, जहां मेरे साथ सैकड़ों यतीम और बेसहारा बच्चों की तालीम व तरबियत और पुरसकून माहौल में परवरिश हो रही है, और ये सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करीम आपको सदा सलामत रखे, और उम्मीद है कि आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत और तावन जारी रखेंगे। कोट UK ऑफिस 03001234,
2: आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है। आपको मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कंपनियों और मुख्तलिफ बैंकों के नाम से टेलीफोन करते हैं और आपको लॉटरी जीतने की खुशखबरी देते हैं, और फिर जोंसा देकर आपसे रकम वसूल करके भाग जाते हैं। ऐसी तमाम फोन कॉल से होशियार रहें। इंस्पायर FM कम्युनिटी अवेयरनेस मैसेज।
3: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.
4: Assalamu alaikum. You are listening to Inspire 105.1 FM. We will now be playing the Hadith and the Duas.